0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। सघन सा

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों।

दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई चाल चलता है

न दिन होता है, अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

हाँ बिल्कुल, वैसा ही मौसम आया है जैसा कि उदित नारायण और साधना सरगम ने अभी हमें बताया। स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा। बने रहेगा हमारा साथ पूरे 11 बजे तक, फिलहाल 10:11। कार्यक्रम की शुरुआत क्या मौसम से हुआ तो फिर बता दूं आपको मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी, गरज चमक के भी संभावना बनी रहेगी। फिलहाल तो आपको बता दूं कि मैं हल्की फुहारों से जूझते हुए या कि फिर कहें कि हल्की फुहारों का आनंद लेते हुए स्टूडियो तक पहुंची हूं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की तो अधिकतम तापमान 35.5 यानी कि सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 24.6 यानी कि सामान्य से 2.4 डिग्री कम रहा। अधिकतम आर्द्रता 95% और न्यूनतम आर्द्रता 62% रही। 4.7 मिलीमीटर वर्षा रही। मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी उड़ीसा के तट के आसपास समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। 19 जून से 21 जून तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तट के समुद्री क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप जहां ढेर सारे गाने और साथ में सिलसिला बातचीत का गपशप का चलता रहेगा।

0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप का अगला सेगमेंट पहुंचने वाला है आप तक।
1: आज के दिन
0: तो बता दूं आपको, आज के दिन विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक अनुवांशिक रक्त विकार, इस रक्त विकार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने और इसके इलाज के लिए आज के दिन को, यानी कि 19 जून के दिन को मनाया जाता है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की घोषणा युद्ध और संघर्ष वाले क्षेत्रों में यौन हिंसा के शिकार हुए लोगों के समर्थन और इस समस्या को खत्म करने के लिए किया गया था। आज ही के दिन यानी कि 19 जून को इस दिन को भी हम मनाते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। आज के दिन को संयुक्त राज्य अमेरिका में जून 3 के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अश्वेत अमेरिकियों की गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है। हर साल 19 जून को मनोरंजन और सुकून से भरे वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धीरे धीरे चलकर और प्रकृति या आसपास के माहौल का आनंद लेकर तनाव मुक्त रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। 19 जून को मनाया जाता है विश्व एथनिक दिवस। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही साथ आज का दिन यानी कि 19 जून का दिन राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पाड़ीकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 19 जून को यह दिन मनाया जाता है, जो लोगों को पढ़ने के प्रति जागरूक करता है। और जब बात हुई है पढ़ने की, तो बता दूं आपको, भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 19 जून को हुआ था, वर्ष 1947 को। उन्हें वर्ष 1981 में उनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज मिला था। उनकी लेखन शैली को जादुई यथार्थवाद और ऐतिहासिक कथाओं का मिश्रण माना जाता है। पश्चिम बंगाल की चर्चित घरेलू कार्यकर्ता और लेखक बेबी हल्दर का जन्म आज ही के दिन हुआ था, वर्ष 1973 में। उनकी प्रशंसित आत्मकथा आलो अंधारी लगभग 13 विदेशी भाषाओं सहित 21 भाषाओं में अनुदित की जा चुकी है और वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बन चुका है, उस आत्मकथा का एक हिस्सा। भारतीय राजनीति का प्रतिपक्ष नेता का चेहरा राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आज ही के दिन हुआ था जन्म, वर्ष 1970 में। बात करें अगर बॉलीवुड की, तो वर्ष 1958 में जन्म हुआ था मुकेश खन्ना का और आशीष विद्यार्थी का जन्म हुआ था वर्ष 1962 में। चलते हैं थोड़ा और पीछे। 19 जून 1901 राजचंद्र बोस, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ, सांख्यिकी विद, जिन्हें गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में डिजाइन सिद्धांत, त्रुटि सुधार कोड और उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। ये तो हुई बातें
1: आज के दिन।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जानकारी पूर्ण ब्रेक के बाद सुनेंगे बैक टू बैक दो गाने।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

0: दिल आशना है आप पर तो हमारी नजर भी आशना है। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप 10:41 और 23 सेकंड ट्यून किया है आपने 107 MHz पर आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो चैनल, जुड़ चुके हैं दिल से दिल तक। तो फिलहाल वक्त यही कहता है कि दे दो आप सभी सुनने वालों को
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: जब बात होती है चुटकी भर नुस्खे की, तो ऐसे दिल कहता है क्या क्या बता दूं। बरसात का मौसम है, घर से निकलें तो अपनी छतरी लेना बिल्कुल ना भूलें। क्या कहा? बोर हो गए हैं उसी पुरानी छतरी से और अभी फटी भी नहीं है, बिल्कुल सही, मजबूत चल रही है, तो दीजिए उसको नया लुक। आप परेशान हो चुकी थी ना अपनी उस साड़ी से, तो बस निकालिए अपनी किसी पुरानी साड़ी का बॉर्डर और उसे फ्रील करते हुए अटैच कर दीजिए अपनी छतरी में। आ गया ना नया लुक। फैब्रिक पेंट या एक्रेलिक कलर से आप बना सकती हैं अपने पुराने छाते पर कुछ नई डिजाइंस, या कि चाहे तो अपनी छतरी को कोटेशन से भर सकती हैं। बिल्कुल अलग दिखाई देने वाली है आपकी छतरी। कढ़ाई या पैचेस भी आप लगा सकती हैं छाते पर और छाती के किनारों पर रंग बिरंगे गोटा पट्टी, लेस या कि फिर पॉम्पॉम भी लगाया जा सकता है। याद कीजिए स्कूल के दिनों को, चोटी में जो रिबन लगाए जाते थे उन रिबन से भी आप अपने छाते को नया लुक दे सकती हैं। हैंडल में रिबन रैप कर सकती हैं, हैंडल में आप जूट की रस्सियां भी रैप करके अपनी छतरी को बिल्कुल नया लुक दे सकती हैं। बिल्कुल आप स्टिकर से भी, तरह तरह के स्टिकर से भी अपने छाते को सजा कर एक नया रूप दे सकती हैं। ये जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं और सोच रहे हैं कि ये सारी बातें औरतों वाले छातों की हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। आप अपनी पुरानी शर्ट के बटन्स निकालिए और अपने छाते के चारों तरफ उन्हें ग्लू से स्टिक कर दीजिए। देखिए किस तरह आपकी छतरी नए लुक में आ जाती है। या कि फिर जिन जगहों पर तार को धागे की सहायता से बांधा गया है कपड़े पर, उन सभी पॉइंट्स पे आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम, कुछ नहीं तो अपनी पुरानी शर्ट के बटन ही टांग दीजिए और दीजिए अपनी छतरी को नया लुक। कैसा लगा आपको ये छतरी वाला घरेलू नुस्खा?
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: तो आप सभी को इंतजार है दिल से दिल तक जुड़ जाने का। बिल्कुल मैं कर रही हूं आपका इंतजार। नंबर हमारा वही जो आप सबको है पता, 2213-1341। जुड़ जाइए हमसे और बता दीजिए, पूरे शहर में मची हुई है धूम योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग फॉर हेल्दी एजिंग। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्र है हमारा शहर कोलकाता। तो शहर कोलकाता के FM रेनबो के स्टूडियो में बैठी हुई पूजा आप सबसे जानना चाहती है किस तरह जुड़े हुए हैं आप योग से। क्या कहा? अभी तक नहीं जुड़े हैं? अरे तो कब जुड़ेंगे, जुड़ जाइए। और अगर जुड़ रहे हैं तो क्या सिर्फ इस धूम के दौर में, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के

लिए या कि फिर आपने योग को बना लिया है अपने जीवन का हिस्सा। अगर उम्र को देनी है मात, बीमारियों को देनी है चुनौती, तो योग सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? जुड़ जाइए दिल से दिल तक और बता दीजिए आपके योग और योग दिवस के बारे में।

0: फ्रॉम नॉनस्टॉप गपशप जुड़ चुकी हैं दिल से दिल तक पायल। हेलो
1: हेलो,
0: स्वागत है पायल आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप सभी सुनने वालों से।
1: হ্যাঁ দিদি, দেখো আমার মনে হয় আজকে যে টপিকটা রেখেছো ইয়োগা দিবসে, তো আমার মনে হয় যে আমাদের পুরো লাইফটাই একটা ইয়োগার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাই তো? তো আমার মনে হয় আমরা জীবনে যে প্রতিটা কাজ করছি, আমরা যে প্রফেশনের সাথে যেতে যুক্ত আছি, তো প্রত্যেকটা জিনিস একটা ইয়োগা, মানে আমাদের সাধনা, ডেডিকেশন, এইটা যদি আমাদের না থাকে আমরা কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিয়ে করতে পারবো না। তাই আমার মনে হয় সবার আগে ইয়োগাটা প্রত্যেকেরই একটু প্র্যাকটিস করা উচিত, যাতে আমরা প্রত্যেকটা কাজে মনোযোগ দিয়ে করতে পারি বা আমাদের ডেডিকেশন বা সাধনাটা আরো বাড়ে। আর আমার অবশ্যই যেটা সেটা হচ্ছে, আমি গান করি বলে সেটা অবশ্যই একটা সাধনা বা ইয়োগার জায়গা, তো সেটা আমি করি সকালে, মোটামুটি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি আরো অ্যাটেনশনটা বাড়ানোর জন্য।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पायल, आपने एकदम सही कहा कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो योग पर आधारित है। और विशेष रूप से अगर हम भारतीय जीवनचर्या की बात करें तो भारतीय जीवनचर्या तो पूरी तरह से यौगिक जीवनचर्या है। हमारे प्रोग्राम में जुड़े थे विमल मित्रा राजबल हाट हुगली से, और विमल जी ने बताया कि आज भी उनके घर में तालाब है, पुकुर है, और वो जाकर अपने तालाब में ही स्नान करते हैं। घर के जितने भी मेल पर्सन है वो तालाब में ही जाकर स्नान करते हैं और उस दौरान थोड़ी देर स्विमिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो स्विमिंग भी एक तरह से हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे प्राणों को भी व्यायाम से, यानी कि प्राणायाम से जोड़े रखता है। उस समय हम ब्रीथ कंट्रोल का काम कर रहे होते हैं। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं समय हमारे पास बेहद कम है, 10:54:20। लेना होगा आप सभी सुनने वालों से इजाजत आज के लिए। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से होगी मुलाकात फिर किसी सुबह फिर किसी शाम। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जुड़े रहें दिल से दिल तक। चलते चलते आप सभी के लिए आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया छुए जाक मन।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

3:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। 107 FM रेनबो पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा को और कार्यक्रम लेकर आ चुकी है आपकी रेडियो दोस्त। जी हाँ, वही वाला कार्यक्रम जिसे आप हर रोज इसी वक्त इसी चैनल के जरिए सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कार्यक्रम का तो नाम जो है उसे आप जानते ही हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी चलिए फिर एक बार कार्यक्रम का नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को करते हैं शुरू। तो चलिए, कार्यक्रम का नाम तो वही है जिसमें हम ढेरों अलग अलग तरीके के तड़के लगाते रहते हैं। तड़का लगता है कुछ बातों का तो कुछ गीतों का। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम वही है 3 का तड़का। तो चलिए, संग है आपके आपकी रेडियो दोस्त शर्मिषा और आज के इस कार्यक्रम का समय बहुत ही कम है। जी हाँ, यानी कि ठीक 3:30 से आप लोगों के लिए रहेगा एक प्रायोजित कार्यक्रम। और इसीलिए तो कह रही हूँ कि भाई थोड़ा सा समय ही है सही, लेकिन दोपहर का समय जो है वो थोड़ा सा मनोरंजक तो होना ही चाहिए। और वैसे भी ऊपर वाले ने तो कमाल कर ही दिया है। जी हाँ, इतने दिनों से गर्मी से परेशान करके रखा था हम सभी को और उसके बाद खैर राहत की सांस हम सभी को मिल ही चुकी है। जी हाँ, बरसात वाला दिन यानी कि राहत की सांस। तो चलिए, राहत की सांस जब ऊपर वाले ने हम सबको दे ही दी है तो चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं आपको, जो कि कार्यक्रम का सबसे पहला गीत होगा और उसके बाद तो बातें होती ही रहेंगी इसी कार्यक्रम में।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

3:12 है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर एक बार आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त से शर्मिशा को। कार्यक्रम चल रहा है 3 का तड़का और आज के इस कार्यक्रम में हम तड़का लगाते हैं अलग अलग बातों का जो कि जुड़ा हर बातें जुड़ी होती हैं बॉलीवुड की दुनिया के साथ। तो चलिए, आज है शुक्रवार, यानी कि फिर एक बार मौका मिल जाता है हमें उन फिल्मों को देखने का जिनके बारे में हम इतने दिनों से सुनते ही आ रहे होते हैं, जिनका ट्रेलर हमने देख लिया होता है, जिनके बारे में अलग अलग तरह की बातें तो हमने बहुत ही सुनी होती हैं, लेकिन शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जब वही कही सुनी बातें आखिर कितनी ठीक है कितनी गलत है यही परख करने के लिए शुक्रवार के दिन फिल्में रिलीज़ होती हैं सिनेमा हॉल्स में। इसके अलावा वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो वो भी आप देख पाते हैं। तो चलिए, इस हफ्ते आपके मनोरंजन के लिए आखिर कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 19 जून के दिन OTT और थिएटर्स में कई सारी फिल्में और सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं। एक तरफ जहां बड़ी बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स पर बंद कमरों के रहस्य और पुराने रिश्तों के बदले की कहानियां आपका वीकेंड और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉकटेल 2 के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको रोमांस भी मिल जाएगा, साथ ही साथ रोमांस के साथ ड्रामा भी देख सकते हैं इसी फिल्म में और सिनेमाघरों में बिल्कुल रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा लीड एक्टर्स की अगर बात करें तो शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन के बेहतरीन अभिनय को देखा जा सकता है इस फिल्म में। और अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस फिल्म में हम देखेंगे क्या, क्या दिखने वाला है, क्या कहानी है इस फिल्म की। तो साल 2012 की सुपरहिट फिल्म कॉकटेल के सीक्वल में आज के दौर की दोस्ती, उलझे हुए रिश्ते और दिल टूटने की कहानी को एक नए और स्टाइलिश अंदाज में पेश किया जाने वाला है। तो चलिए, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके देखने को मिलेगा यह सोचकर हम सब देखेंगे इस फिल्म को जिसका नाम है कॉकटेल 2। इसके अलावा एक और फिल्म के बारे में बात करूंगी, वैसे एक और नहीं बल्कि और भी बहुत सी बातें होंगी जो कि बॉलीवुड की दुनिया के साथ जुड़ी है। जी हाँ, अलग अलग फिल्मों से जुड़ी हुई है आज की सारी बातें, लेकिन चलिए समय बहुत ही कम है हमारे हाथ में क्योंकि बस थोड़ी देर में आप सभी के लिए रहेगा एक प्रायोजित कार्यक्रम। तो फिलहाल 3:15 और इस वक्त मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आयुष्मान खुराना की आवाज़ में।

0: 3:20 कार्यक्रम चल रहा है 3 का तड़का। वैसे तो इस कार्यक्रम में बातें शादी गीत का जो सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, लेकिन समय हो चला है परियोजना प्रस्तुति का।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: FM रेनबो परियोजना प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं एक नई योजना को लेकर। बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। तो आज की योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, जो अन्यथा लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे। पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे। इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को LPG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। उज्ज्वला 2.0 की बात करें तो इस योजना के दूसरे चरण में प्रवासियों को भी शामिल किया गया और 1 करोड़ से अधिक अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें जमा मुक्त LPG कनेक्शन के साथ पहली रिफिल और चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में इस योजना के तहत LPG कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया था। इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। ये योजना 2016 में शुरू की गई थी और अब इसका तीसरा चरण यानी PM उज्ज्वला योजना 3.0 विशेष रूप से 2026 में सक्रिय हो चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं के पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन और कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। PM उज्ज्वला योजना 3.0 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल pmuy.gov.in या फिर नजदीकी LPG वितरक के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक

0: दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और BPL राशन कार्ड या फिर प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: एक सौ सात एफ एम रेनबो परियोजना प्रस्तुति आज यहीं तक बात कर रहे थे PM उज्ज्वला योजना को लेकर। कल फिर से इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा हाजिर हो जाएंगे और लेकर आएंगे आप सभी श्रोताओं के लिए एक नई योजना।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: तीन का तड़का कार्यक्रम में चलिए अब बात कर लेते हैं वेब सीरीज को लेकर। अगर आप वेब सीरीज देखने के दीवाने हैं तो ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 बिल्कुल तैयार है आप सबके मनोरंजन के लिए। जी हाँ, देखिए और दिखाइए और मनोरंजन को फैलाना भी जरूरी है। और चलिए लीड एक्टर्स की अगर बात करें तो संचिता बसु के अलावा धवल ठाकुर के बेहतरीन अभिनय को देखा जा सकता है। इसके अलावा अति रड़ी की अगर बात करें तो ये तो वैसे मलयालम फिल्म है लेकिन हिंदी डब वर्जन में भी इस फिल्म को देखा जा सकता है। तो बातें तो बहुत सी थी लेकिन क्या ही करें, है ना, समय जो है आज के लिए बहुत ही है कम। तो चलिए एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए, और इसके अलावा बता दूं कि ठीक 3:30 पर आप सभी के लिए रहेगा एक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है।

0: ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओ, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओ, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओ, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओ, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओ, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
3: बिन्नी का सपना।
2: एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
3: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
3: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली
3: होता है तो अपने मित्र
2: तो मैंने अपने
1: और विलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था
2: कि कोई चीज,
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी

प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया।

ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर

चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा।

0: खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ

0: आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: इसी के साथ प्रायोजित कार्यक्रम होता है यहीं पर समाप्त। तीन का तड़का कार्यक्रम आज के

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: লিসেন না, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
4: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
3: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
4: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট আর সবচেয়ে জরুরি ওটিপি ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
5: বিষয়ে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: টেলিলয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

7:10 है स्टूडियो घड़ी का समय और इंतजार की घड़ियां खत्म करने के बाद फिर एक बार शर्मिशा हाजिर हो चुकी है, आप सभी के पास पहुंच चुकी है। जी हाँ, कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी ये रेडियो दोस्त और कार्यक्रम का नाम है छाया लोग। जी हाँ, और शुक्रवार की शाम है तो शुक्रवार की शाम हम लाते हैं आपके लिए कुछ खास, कुछ अलग। और इस अलग अंदाज वाले कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है 107 FM रेनबो। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी शुक्रवार के शाम की। जी हाँ, छाया लोग के अंतर्गत हम लेकर आते हैं सेलुलॉइड सुपर हिट्स, जिसमें नई पुरानी उठा है ये कार्यक्रम जिसका नाम है छाया लोग के अंतर्गत सेलुलॉइड सुपर हिट्स। कार्यक्रम तो आगे बढ़ाऊंगी लेकिन इस बीच मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, वही सुहाना मौसम है और भीगा भीगा मौसम है। जी हाँ, बरसात जमकर हो रही है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा। और ऐसे में मेरा मन, आपका मन एक चाय की प्याली के लिए तो कह ही सकता है ना। और ये छोटी सी गुजारिश मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है ना। और ये जो चाय की प्याली है और शाम का समय है और शाम के साथ चाय की प्याली का जो साथ होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और ऐसे में चलिए, कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम के साथ गर्मा गर्म चाय की प्याली का संग अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। और चाय की चुस्की लगाते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल एक गर्मा गर्म गाना, यानी कि गर्मा गर्म चाय की प्याली में चुस्की देने वाला गाना आप सभी सुनने वालों के लिए। और उसके बाद तो बातें होती ही रहेंगी।

गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ चुका है और फिलहाल समय है 7:18 और संगे आप शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोग के अंदर सेल्यूलर सुपर हिट्स। और चलिए इस कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर, यानी कि बताऊं आपको कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर आज के दिन कौन मनाते हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो सबसे पहले नाम आता है अभिनेता आशीष विद्यार्थी का। आशीष विद्यार्थी भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज और बहुमुखी अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से अपनी दमदार खलनायक यानी कि विलेन और चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली सहित 11 भाषाओं में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनके शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण उन्होंने लिया था और उसके बाद बात करूंगी उनके करियर की शुरुआत की। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो है कि ये जो अभिनेता हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ यानी कि आशीष विद्यार्थी, इन्हें हमने बॉलीवुड के फिल्मों में दो तरह के रोल्स को करते हुए देखा है, जिसमें विलन का रोल भी है और इसके अलावा सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी इनके बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था। तो बात ये आती है कि विलन और सपोर्टिंग एक्टर इन दोनों रोल्स में सबसे ज़्यादा कामयाबी आखिर इन्हें किस रोल में ज़्यादा मिली थी। कुछ कहेंगे कि विलन के रोल में ही इन्हें ज़्यादा सूट करता था या फिर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर इनके अभिनय को दर्शकों ने ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा प्रेम दिया। तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अभिनेता आशीष विद्यार्थी को। इसके अलावा एक और शख्स भी है जिनका बर्थडे भी मनाया जाता है आज ही के दिन, और एक और प्यारी सी बात ये है कि ये जो दूसरे शख्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी, इनका जुड़ाव भी बॉलीवुड की दुनिया के साथ रहा है। तो चलिए बात होती रहेगी और फिलहाल बात मैं कर रही थी अभिनेता आशीष विद्यार्थी को लेकर, तो चलिए उन्हीं के अभिनय किए हुए एक फिल्म से गाना सुनवाऊँ आपको। फिल्म है जोड़ी नंबर 1 और हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा है ये गीत। तो चलिए अंडे के फंडे के बारे में भला कौन नहीं जानता है ना, तो चलिए उसी जाने पहचाने अंडे के फंडे को लेकर फिर एक बार गुनगुनाया जाए। कार्यक्रम चल रहा है छाया लोक के अंतर्गत सेल्यूलर सुपर हिट्स।

अंडे के फंडे को लेकर तो बहुत सी बातें हो गई, लेकिन फिलहाल अभिनेता आशीष विद्यार्थी को लेकर मैं बात कर रही थी। और करियर की शुरुआत आखिर उनकी कैसे हुई, किस फिल्म के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, चलिए उसके बारे में आपको बताऊं। उन्होंने 1991 की फिल्म सरदार में विपिन मेनन का किरदार निभाया था, लेकिन उनकी असली पहचान 1994 की फिल्म द्रोहकाल से बनी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा दूसरे पहचान की अगर मैं बात करूं तो फिल्मों के अलावा एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आशीष विद्यार्थी का नाम जाना जाता है। इसका अलावा एक और गुण भी है ना उनके अंदर, और वो ये है कि लोकप्रिय

फूड ब्लॉगर के तौर पर भी उनके नाम को जाना जाता है। आशीष विद्यार्थी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कई शानदार और सफल फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध और हिट फिल्मों की अगर बात करें तो कहो ना प्यार है, इसके अलावा बर्फी या फिर जीत के अलावा एक और फिल्म है और वो है आर राजकुमार। जी हाँ, लिस्ट जो है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि बिच्छू जो कि साल 2000 में रिलीज़ हुई थी, इसके अलावा एलओसी कारगिल के अलावा जोड़ी नंबर 1 और आखिर में बात कर सकते हैं फिल्म बेगम जान। इन सारी फिल्मों में हमने आशीष विद्यार्थी के बेहतरीन अभिनय को देखा था। आशीष विद्यार्थी बेस्ट विलन या फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जी हाँ इसी को लेकर मैं कर रही थी ना बात कि बेस्ट विलेन या फिर सपोर्टिंग एक्टर, ये तो खैर आपकी चॉइस है कि इस अभिनेता को आपने किस रोल में बेहतर तरीके से देखा था। आशीष विद्यार्थी को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए एक बेहतरीन विलेन और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दोनों के रूप में समान रूप से सराहा गया, लेकिन आलोचकों और पुरस्कारों की दृष्टि से उनका सहायक अभिनेता यानी कि सपोर्टिंग एक्टर का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। उन्होंने अपनी पहली ही प्रमुख हिंदी फिल्म ध्रुवकाल जो कि 1994 में बनी थी, इस फिल्म में एक पुलिस वाले यानी कि सहायक भूमिका सपोर्टिंग एक्टर में पुलिस वाले का किरदार निभाकर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने जीता था। हालांकि हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान एक खतरनाक और प्रभावशाली खलनायक के रूप में भी बहुत गहरी रही है। उन्होंने जिद्दी सोल्जर के अलावा वास्तव और बादल जैसी फिल्मों में शानदार विलेन का किरदार निभाया है। उनकी कला की गहराई को देखें तो सहायक अभिनेता के रूप में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें सबसे अधिक सम्मान दिलाया, लेकिन कॉमर्शियल सिनेमा में दर्शकों ने उन्हें विलेन वाले अंदाज को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। खैर ये तो अपनी अपनी चॉइस है कि एक आर्टिस्ट को, एक अभिनेता को, एक कलाकार को आप किस रूप में बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं। तो चलिए समय हो चला है 7:30 और कार्यक्रम चल रहा है चायलुक के अंतर्गत सेलुलॉइड सुपरहिट्स, जिसमें बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी बातें आप सभी श्रोताओं के साथ साझा की जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें होंगी आज के इसी कार्यक्रम में। और जी हाँ, जैसा कि मैं बता रही थी कि एक और शख्स जिनका जन्मदिन मनाया जाता है आज ही के दिन, बात करूँगी उनके बारे में भी, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उदित नारायण अलके याग्निक की आवाज़ में इस गीत को आप सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों

प्यार की कश्ती में चाहे आप कितने भी दूर निकल जाएं, लेकिन वापस आपको यहीं पर आना है, क्योंकि यहाँ चल रहा है कार्यक्रम चायलोक के अंतर्गत सेल्युलर सुपर हिट्स। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और किसी भी हाल में इस कार्यक्रम को मिस आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कई सारी बातें हो रही हैं इस कार्यक्रम में, और ऐसे में इस कार्यक्रम को मिस करना बिल्कुल भी संभव नहीं। और चलिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया है चैनल 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे इस प्रसारण को आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले शख्स के बारे में जो आज के दिन मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और आपको बताऊं कि ये जो शख्स हैं जिनके बारे में मैं बताने वाली हूँ, इनका जुड़ाव बॉलीवुड की दुनिया के साथ तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने और भी कई सारी भाषाओं में फिल्में की हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्राइमरीली उन्होंने साउथ की फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा, या फिर सबसे पहले बॉलीवुड और उसके बाद साउथ, बातें होंगी ये सारी। अच्छा, उससे पहले ये बताइए कि क्या आपको फिल्म सिंघम याद है? जी हाँ, वही वाली फिल्म जिसमें अजय देवगन के साथ उसी खूबसूरत अभिनेत्री को हमने अभिनय करते हुए देखा था। अच्छा, सिंघम याद नहीं तो स्पेशल 26 ज़रूर याद होगी। जी हाँ, फिर एक बार वही खूबसूरत अभिनेत्री और साथ दिखे थे अभिनेता अक्षय कुमार। जी हाँ, बात हो रही है किसी और की नहीं बल्कि अभिनेत्री काजल अग्रवाल की। मना रही हैं आज के दिन वे अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो काजल अग्रवाल भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और मॉडल रही हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं और अपने बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती के लिए दक्षिण भारतीय फिल्मों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। और उनके एक्टिंग करियर की अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड डेब्यू उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना में एक छोटी भूमिका के साथ की थी। और साउथ डेब्यू की अगर बात करें तो उनकी पहली बड़ी तेलुगु फिल्म लक्ष्मी कल्याणम, जो कि 2007 में बनी थी, इस फिल्म के साथ उन्होंने साउथ डेब्यू की शुरुआत की थी। तो चलिए, सफलता और टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो उन्हें साल 2009 की ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म मगधीरा से अपार सफलता और पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने आर्य टू डार्लिंग के अलावा और बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में उन्हें अभिनय करते हुए देखा गया था। और हिंदी सिनेमा में पहचान की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड में उन्होंने सिंघम, जिसमें अजय देवगन के साथ उन्हें देखा गया था, और इसके अलावा स्पेशल 26 में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ उनके बेहतरीन अभिनय को हमने देखा था। और इन सारी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करते हुए काजल अग्रवाल ने अपने खूबसूरती के जलवे जो हैं वो बिखेरे थे। और चलिए, बात हो रही है हैप्पी वाले बर्थडे को लेकर, तो आज एक नहीं बल्कि दो अलग अलग शख्स को लेकर हो रही थी बात जो बॉलीवुड की दुनिया में मनाते हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए, फिलहाल खूबसूरत अभिनेत्री की जब बात हो ही रही है तो श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ में क्यों ना ये गीत सुने।

तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं अगली फिल्म को लेकर, यानी कि उस डायरेक्टर को लेकर जिनका नाम जुड़ा हुआ है फिल्म थ्री इडियट्स के साथ। जी हाँ, बात कर रही हूँ राजकुमार हिरानी, जिन्हें जिनके साथ फिल्म थ्री इडियट्स को जोड़ा जाता है। और उन्होंने पिछले दिनों अपने आने वाली नई फिल्म के बारे में एक अपडेट दिया, और वो अपडेट आखिर क्या है, किस फिल्म के बारे में है, तो चलिए उसी को लेकर कर लेते हैं बात। थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, और पिछले दिनों उन्होंने बताया कि मोस्ट अवेटेड फिल्म जो है थ्री इडियट्स के सीक्वल पर उन्होंने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने आगे ये कहा था कि थ्री इडियट्स में रेंचो फरहान और राजू की कॉलेज लाइफ हमने देखी थी, वहीं सीक्वल में उनकी आज जिंदगी दिखाई जाएगी और जानेंगे कि ये तीनों कहाँ और क्या कर रहे हैं। यानी कि इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है थ्री इडियट्स की, जो नेक्स्ट पार्ट हमें देखने को मिलेगा, उसमें बिल्कुल अलग कहानी होगी। यानी कि पहले पार्ट में हमने जो कुछ देखा था, जहाँ तक देखा था, कहानी उसके बाद से शुरू होती है। ये इस सीक्वल में 15-20 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी, और ऑडियंस को बताया जाएगा कि अब आगे इन तीनों किरदारों के साथ आखिर क्या होने वाला है। ये कॉलेज या फिर वैसी किसी चीज़ के बारे में नहीं है। जी हाँ, यानी कि कॉलेज से जुड़ी कोई भी बात हमें इस फिल्म में नज़र नहीं आएगी। अब इनकी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे भी हैं, यानी कि परिवार इनका बड़ा हो चुका है, और वे उम्र के इस पड़ाव पर आने वाले तनाव का सामना कर रहे होते हैं। अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या क्या होता है, तो बस इंतज़ार करना है नेक्स्ट पार्ट का, यानी कि थ्री इडियट्स के अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे। और खैर, डायरेक्टर ने इतना तो बता ही दिया है कि पिछले पार्ट में, यानी कि थ्री इडियट्स पार्ट वन में हमने जो कुछ देखा था उससे बिल्कुल अलग होगा, यानी कि कहानी उसके बाद से शुरू होती है, यानी कि एक नया जीवन हम कह सकते हैं कि परिवार हर किरदार का बड़ा हो चुका है और वे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और कई सारी तनाव परेशानियों का सामना करते हुए फिल्म जो है वो आगे बढ़ती चली जाती है। और बातें होंगी और भी इस फिल्म को लेकर, लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत शान शांतनु मैत्रेय की आवाज़ में

साल 2009 में इस फिल्म में भारत की शिक्षा प्रणाली पर एक व्यंग्य कसा गया था और ये मैसेज दिया गया था कि अपने पैशन को फॉलो करो। साल 2009 में रिलीज हुई थ्री इडियट्स एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे राजकुमार हिरानी इन्होंने डायरेक्ट किया था और अभिजात जोशी के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी को लिखा गया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में इस गीत को सुनते सुनते मैं और आप जुड़ जाएंगे समाचार की दुनिया के साथ। और ठीक 2 मिनट के अंतराल के बाद फिर एक बार छायलोक सिल्वर सुपर हिट्स से जुड़ जाएगा आप सभी श्रोताओं के साथ।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

8:11 है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर एक बार शर्मिष्ठा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम चल रहा है छाया लोक के अंतर्गत सेलुलर सुपरहिट्स और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने चैनल ट्यून किया है 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए छाया लोक के अंतर्गत शुक्रवार की शाम हम लेकर आते हैं आपके लिए सेलुलर सुपरहिट्स और आज के सेगमेंट में को आगे बढ़ाते हुए अब बात करना चाहूँगी उस सुपरहिट गाने के बारे में जिस गाने के साथ माधुरी दीक्षित के हिट डांस को लोग आज भी नहीं भूल पाए थे। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या थी इस गाने की पता है? इस गाने में जिस सिंगर ने अपनी आवाज़ दी है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को, जी हाँ, गाने के एक ही लाइन को बार बार गाया है। और अगर एक ही लाइन को बार बार गाया है तो पूरा जो गाना है वो किस तरीके से पूरा हुआ और इसमें आखिर क्या क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, ये सारी बातें होंगी इसी कार्यक्रम में। जी हाँ, उसी सुपरहिट गाने को लेकर बात करूंगी। वैसे तो फिल्म है 90s की, लेकिन भले ही 90s की फिल्म हो लेकिन ना ही लोग इतने

सालों में माधुरी दीक्षित के डांस को भूल पाए हैं और ना ही उस गाने को। तो चलिए बातें होंगी उसी गाने को लेकर। जी हाँ, उसी सुपरहिट गाने को लेकर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेश वाडकर और आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म परिंदा से ये बहुत ही खूबसूरत तराना आप सभी सुनने वालों के लिए।

परिंदा फिल्म से आप इस खूबसूरत नगमे को सुन रहे थे, सुरेश वाडकर और आशा भोंसले की आवाज़ में। और फिर एक बार इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ माधुरी दीक्षित के बेहतरीन अभिनय को हम सब ने देखा था। और फिलहाल मैं बात करने जा रही हूँ उसी, जी हाँ, उसी फेमस गाने को लेकर जिसमें फिर एक बार माधुरी दीक्षित के नाम को जोड़ा जाता है, उनके डांस को जोड़ा जाता है, और उनके बेहतरीन डांस के साथ खूबसूरत गाने को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। माधुरी दीक्षित के 80 और 90 के दशक के गानों की बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। उन पर फिल्माए गए ज्यादातर गानों पर आज भी लड़कियां डांस करती हैं या फिर डांस शोज में परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही एक गाना है सैलाब फिल्म का। इसके बोल हैं हमको आजकल है इंतजार। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे गाने में सिंगर ने सिर्फ एक ही लाइन गाई है और बाकी गाना कोरस की आवाज में है। हमको आजकल है इंतजार इस गाने की लिरिक्स कान में पड़ते ही पीले ब्लाउज और हरी लाल साड़ी में माधुरी दीक्षित आंखों के सामने आ जाती है। गाने में उन्होंने लुभावना लावनी और कोली डांस किया है। गाना करीब 8 मिनट का है और इस पूरे सॉन्ग में सिंगर अनुपमा देशपांडे ने सिर्फ एक ही लाइन गाई है, हमको आजकल है इंतजार कोई आए लेके प्यार। हिंदी गानों में ये अपने आप का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था और ये सुपर डुपर हिट रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। गाना जावेद अख्तर ने लिखा था, इसके म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी थे। सामान्य तौर पर सिंगर मुखड़ा और अंतरा गाते हैं, बीच बीच में या फिर बैकिंग के लिए कोरस का सहारा लिया जाता है, और इस गाने में मामला जो है वो बिल्कुल ही उल्टा था। बाप्पी लहरी और जावेद अख्तर ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि उम्मीद से ज़्यादा सफल हुआ। अनुपमा देशपांडे एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्हें पता चला था कि पूरे गाने में एक ही लाइन गानी है तो थोड़ा अजीब तो उन्हें लगा था, लेकिन बप्पी लहरी के विजन पर उन्हें पूरा भरोसा था और उन पर किया गया भरोसा आखिर रंग लाया था। जी हाँ, करीब 8 मिनट का गाना है लेकिन सुपर डुपर हिट अभिनेत्री के साथ जुड़ा हुआ जब वो गाना हो, चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो, आखिर जल्दी किसे है ना। तो चलिए सुनवाते हैं आपको वही सदाबहार गीत जिसे आज भी लोग सुनना उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं।

हिंदी सिनेमा में कई सारे ऐसे गाने हैं जो कि समय के साथ साथ और ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा पसंदीदा होते गए हैं, और वाकई में इतने सारे गानों में ये एक गाना था जिसमें अनुपमा देशपांडे की आवाज़ आप सुन रहे थे। और वाकई में ये जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि छोटी बातों के अलावा जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ ही कह लीजिए वो जो है वो ढकी रह जाती हैं। और भले ही गलतियाँ कह लीजिए या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि नज़रअंदाज बड़े ही आसान तरीके से की जाती है, लेकिन जब उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, तब हमें ये अंदाज़ा होता है कि जिन गानों को लेकर हम इतना खुश हो रहे थे, मचल रहे थे, जिन गानों के लेकर कई सारे स्टेप्स को हमने रिवाइज किया था, रिहर्सल किए जाते हैं, उन गानों में ऐसी भी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि करूँगी आज के इसी कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल 8:30 है स्टूडियो की घड़ी का समय, और इस वक्त आप संग शर्मिशा के सुन रहे हैं कार्यक्रम छह लोग के अंतर्गत सेलिडॉइड सुपरहिट्स।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया

हिंदी सिनेमा में कई सारे ऐसे गाने हैं जो समय के साथ और भी खास बन गए हैं। एक ऐसा ही गाना है जिसे रोमांस की मिसाल माना जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को शुरुआत में लता मंगेशकर ने ठुकरा दिया था। बाद में वही गीत आशा भोंसले की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और रिलीज़ के बाद लोगों के दिलों पर छा गया। आखिर कौन सा है वो गाना? जी हाँ, इस गाने के पीछे की आखिर कहानी क्या है बताऊंगी ये सारी बातें, लेकिन फ़िलहाल लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

हाँ, तो मैं बात कर रही थी उस गाने को लेकर जिसे सबसे पहले लता मंगेशकर ने गाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब आशा भोंसले ने इस गाने को गाया तो सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में एक अलग जगह बन गई इस गाने को लेकर। अभी ना जाओ छोड़कर साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म हम दोनों का लोकप्रिय गाना था। इस गाने को देवानंद और साधना पर फिल्माया गया था। इसके बोल साहिल लुधियानवी ने लिखे थे जबकि संगीतकार जयदेव ने इसकी धुन तैयार की थी। मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाज ने इस गीत को और भी खास बना दिया था। बताया जाता है कि संगीतकार जयदेव इस गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन जब गाना लता मंगेशकर के पास पहुंचा तो उन्हें इसके कुछ शब्द काफी बोल्ड लगे। उन्हें लगा कि ये बोल उनकी बनाई हुई इमेज के मुताबिक नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर के मना करने के बाद ये गाना उनकी बहन आशा भोंसले को ऑफर किया गया। आशा भोंसले ने मोहम्मद रफी के साथ मिलकर इसे रिकॉर्ड किया। बताया जाता है कि उस दौर में दोनों ने एक ही माइक्रोफोन पर इस गीत को रिकॉर्ड किया था। उस समय इस तरह की रिकॉर्डिंग आसान नहीं मानी जाती थी, लेकिन दोनों गायकों ने इसे बेहद खूबसूरती से निभाया। जब ये गीत रिलीज हुआ तो दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। गाने के बोल, संगीत और मोहम्मद रफी आशा भोंसले की जुगलबंदी ने इसे सुपरहिट बना दिया।

वाकई में इस तरीके के भूले बिसरे गीतों के साथ अपने आप को दूर रख पाना बिल्कुल भी संभव नहीं, और इसीलिए तो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सी बातों के जरिए कुछ भूले तो कुछ बिसरे गीतों को साझा की जाती है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो फिलहाल कार्यक्रम तो चल रहा है सेलुलर सुपरहिट्स, और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

8:55 यानी कि चले आए हैं कार्यक्रम के उस पड़ाव तक जहां पर आकर जाने की बातें की जाती हैं, यानी कि अलविदा कहने की बात की जाती है। वैसे तो दिल पागल है, जी हाँ, और इस पागलपन वाले दिल को लेकर फिर एक बार हाजिर हो जाएंगे और पागलपन वाली बातें साझा करते रहेंगे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। तो चलिए इसी के साथ करते हैं समाप्त आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम को। जी हाँ, जब आप सभी श्रोताओं का साथ मिलता है ना, तो वाकई में कार्यक्रम जो है वो सज उठता है और ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो चलिए खूबसूरत पल को एक खूबसूरत याद बनाते हुए आज के इस कार्यक्रम को करते हैं समाप्त। और जाने से पहले फिर एक बार कहना चाहूँगी कि जल्द वापस आऊँगी, जी हाँ, इसी जगह इसी चैनल पर सोमवार की शाम फिर से बात होगी आप सभी श्रोताओं से। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम करते हैं समाप्त और अलविदा, गुड नाइट, शब्बा खैर।

जिंदगी में आ पाए सुनछिलाम मुकेश एवं वाणी जयराम डुएटे 1973 छवि चलिया छबिर गान लिरिसिस्ट राजेंद्र कृष्ण कम्पोजार आर डी वर्मन एबारेर गाने अमित कुमार सुलक्षणा पंडित